0: कोटवा को पूजन से
1: कोट
0: दर्शन प्रभ्यास
1: इनको मिलियो प्रभ अविनाश
0: कोट मांगे सत्संग
1: इनको
0: होय आसो प्रसन्न
1: नानक तेजन सदा तन तन
0: कोट खानी यर खंड
1: कोट आकाश ब्रह्मंड
0: कोट होय अवतार
1: जगत की नाम विस्तार
0: काल बसे उपासार
1: सदा सदा एक अंकार
0: कोट की ने वो पात
1: ब्रह्मा
0: जाने कोई
1: आपे आप नानक प्रभ सोए
0: कोट बाप ब्रह्म की दास
1: इन होत आत्म प्रकाश
0: कोट तत्के बेते।

0: जिसके अंतर राज अभिमान
1: सोनपति हो स्वान
0: जाना मैं जो बनवंत
1: सो अभिता का जन
0: को कर बंत कहावे
1: जन्म मरे वो जोन प्रमावे
0: कृपा जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानकिया मुख तागे सुपावे
0: ता होए कर गलबावे
1: प्रेम समान का संग न जावे
0: कर मान को ऊपर करे आस
1: पर पीतर ताका होए विनाश
0: अब जाने बलवंत
1: किनमें होए जाए पसमंत
0: वधे आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे कुवारी
0: गुरुप्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दरगह परवान
0: कौन कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले बिरतारे
0: तपस्या करे अहंकार
1: नरक सुर फिर फिर अवतार
0: अंतर कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दरगे को कैसे गवे
0: आप को जो भला कहावे
1: किसे भलाई निकट न आवे
0: की रेन जाका मन होए
1: को नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: अब इसको सुख नाहीं कोए
0: जब जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचर नाहीं चीत
0: जब लग मोह मंगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: तब कृपाते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक मो छूटे
0: सहस कटे लग कोटता आवे
1: विपद न आवे माया पाछे पावे
0: भोग विख्या के करे
1: न तृतारे खप का मरे
0: बिना सुतोग नहीं को राजा
1: सुपन मनोरथ बिरथे सब खाजे
0: रंग साल सुख होए
1: बड भागी किसे प्राप्त होए
0: तनक राम नापे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: रावण का नहार
1: इसके हाथ कहाँ विचार
0: दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप प्रभु सोए
0: किन्नो सो अपने रंग
1: सत्य दूर सबु के संग
0: देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: मिल से आवे न जाए
1: नाग सदी ने आसमाए
0: आप देश समझे आप
1: आपे रचे सबके साथ
0: किन्नो अपन विस्तार
1: सब को

0: कीमत कह न जाए।
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुरु प्रसाद किने वखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट बने किने बिर ले चीना
1: भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर है अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

0: मन कृष्ण लागे आए
1: रखे कुआप
0: मन के कृष्ण ही हाथ
1: प्रभु सुख होए
0: किसका नाम रख कंठ पर होए
1: सिम सिम प्रभु सोए
0: नानक विघ्न लागे कोए
1: मन में का निरंकार
0: कर मन मेरे साथ व्यवहार
1: सदा अमृत पियो
0: सदा सवेला कर ले जियो
1: नो भेक ठाकर कारंग
0: सा संग बिन से सब संग
1: चलो मार्ग गोविंद
0: मिटे पाज प्रिय हर बिंद
1: करो श्रवण हर कथा
0: कादर के नानक उजल मथा
1: दे जन जग माहे
0: सदा सार के गुण गाए
1: नाम नाम जो करे विचार
0: से धनवंत कहीं संसार
1: मुख बोल है हर मुखी
0: सदा सदा जानते सुखी
1: को एक एक पहचान है
0: इतद कियो सो जी जाने
1: नाम संग जिसका मन मान्या
0: नानक ने निरंजन जान्या
1: प्रसाद अपन आप सूझे
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: संग हर हर जस कहे तो
0: सर्व रोग के हर जल रहते
1: केत केवल बख्यान
0: कृष्ण में सोई निर्वाण
1: ऊपर जिस जन की आशा
0: किसकी कटिए जन की फासा
1: ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक किसे न लागे दुख
1: सो हर प्रभु मन चित आवे
0: सो संत सेला नहीं डुलावे
1: अपना कृपा करे
0: सो सेवक का किसते डरे
1: ऐसा सत ऐसा दस्ताया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सीजिया
0: गुरु प्रसाद आशा बुझिया
1: देखो तब सब किस मूल
0: नानक सो सुखम सोई अस्थूल
1: जन्म न किस मरे
0: अपन चाहता आप ही करे
1: जावन दृष्ट अंदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आप सगल में आप
0: अनेक जुगत रचलाप आप
1: आसी नाहि किस खंड
0: कारण तारे हो ब्रह्मंड
1: लख अपे ऊपर प्रताप
0: आप जपायता नानक जाप
1: जाता सो शोभावंत
0: सगल संसार रे तन मंत
1: के सेवक सगल उदारन
0: रब के सेवक दुख विसारन
1: अपे मेल लय कृपाल
0: गुरु का सब जप पै निहाल
1: सेवा सोई लागे
0: जिसना कृपा करे बड़ पागे
1: पावे विश्राम
0: नानक पुरख का उत्तम कर्मान
1: प्रभु कह रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: पाए हो सो हो
0: करने हार पहचान है सोए
1: किया जल मीट लगाना
0: जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: देव जे तिस माहे समाए
0: सब निदान मुनो

0: पूरन सब ढाए
1: नाना विध कर मन तुम नाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सबर जिसके सब जिसके ठाओ
0: जब जब जीवे नाम करनाओ
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगल आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन
0: नाम के संग उतरे संश्रवण
1: कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत केवल प्रधान
1: सत सत जाकी बानी
0: सत पुरुष सब मैं समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पात्र
1: सत करने निर्मल निर्मली
0: से बुझाए तिसे सब पली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरते पाए
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नृत बुझे जे कोई
0: नाम जपता की गत होए
1: सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: शिशु का निहार
0: अपना दुष्ट कर्त विचार
1: की मित न जाने किया
0: नानक दुष्ट पावे सो वर दिया
1: सब पै विस्माद
0: जिन बुझिया तिस आया स्वाद
1: रंग राज जन रहे
0: गुर के बचन पदार्थ लहे
1: वो दाते दुख काटन हार
0: आपके संग करे संसार
1: का सेव सो वड़ पागी
0: जान के

0: संत जन्म करो विचार
1: एक स्मर नाम आधार
0: और पास अमित बसार
1: चरण कमल में उरधारो
0: कान सुप्रभ सम्राट
1: दुर्गा का गौ नाम हरवात
0: तन संत हो भगवंत
1: संत ना का निर्मल मंत
0: कौत रखो मन माहे
1: सर्व ज्ञान के मिट जाए
0: तन प्रचार कौन कठता आवे
1: सो तन सेवा ते पावे
0: सो पुनित बास है मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: सो भागो करे बलि कानी
1: सास सो पापा धरती सरनी
0: पावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हर अवखत लाए
0: दान में हर नाम नदान
1: जब नानक दरगाह परवान
0: बुद्ध हर के नाए
1: दर्श तब ते आवे ठाए
0: न लागे कोई
1: जाके हृदय से हर सोए
0: कदापि ठाडा हर नाओ
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: पावन से पूर्ण होए आस
1: भक्त पाए आत्म प्रकाश
0: जाए बसे अवनाशी
1: हो नानक काटी जन फांसी
0: विचार कहे जन साचा
1: जन मरे सो काचो काचा
0: गौन मिटे प्रभु
1: आप त्याग शरण गुरुदेव
0: जन्म का हुए उदार
1: हमारा सिमर प्राण आधार
0: पावन सुक्त नहारे
1: सिमर शास्त्र वेद विचारे
0: बात करो मन लाए
1: मन बचत नानक फल पाए
0: चौथ तेरे तना
1: ज्ञान पटावे मूर्ख मना
0: मीत कुटाम बेर बनता
1: इनके कहो तम मन सुनाता
0: राज रंग माया विसतार
1: इनके कहो कम छुटकार
0: हाथी रात असवारी
1: झूठा डंस झूठ पासारी
0: जल्दी ये तुझ बुझे नाम बगान
1: नाम सार नान पछताना
0: मत तू ले आने
1: पद बिना बो डूबे सियाने
0: बात करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: तुम रखो मन माहे
1: जन्म जन के दुख जाए
0: आप जपो अवरा नाम जपाओ
1: सुनत कहत रहत कपाओ
0: हर बुद्ध सदहर को नाओ
1: सहस पाए नान गुण गाओ
0: गुण गाओ दरित समैल
1: बिर जावे हमें बैठाल
0: चंद बसे सुख नाल
1: सास राधर नाम समाल
0: सुनन बसगली मना
1: सास पावे सच
0: करो व्यवहार
1: सुख दरगह जयकार
0: अंदर एक देख
1: कौन आन जाके मस्तक लेख
0: जप एको सलाहे
1: एक सिमर एको मन आए
0: गुण गाओ आनंद
1: मंत्र जाप एक भगवंत
0: एक ही कार्य आप
1: पूरन पूर्य प्रभ्याप
0: तारीख ते पाए

0: जब कार्य का सना दृष्टि था
1: तब कहते होता
0: कार्य अपन सुन समाद
1: के संत मात
0: का बन के न जाप दे
1: किसे व्यापत
0: जब अपने आप आप पार ब्रह्म
1: सोवत परम
0: के लाप भरतीजा
1: नानक करने हारना दूजा
0: प्रभु के विल तनी
1: बंधन तो किसका गनी
0: जब के अरग मा पारे
1: नरक सुर को कौन अतार
0: गुण प्रभु से सुपाए
1: आपे
0: आप अपनी जूत
1: है
0: जल तप करने हारे
1: अपने
0: अपने आसन
1: का
0: प्रभु सुवे
1: गोचर
0: प्रभ का
1: चित्र के
0: नाथ रंजन गोचर उगा दे अपने आप आप ही चर जा प्रभुपात होता रंजन रंगा निर्माण
1: कौन कौन कौन अभिमान
0: केवल जागदीश रूपी ज्योत संग समावे
1: तृप्तावे
0: करने हारे
1: नानक करते का नहीं सुमार
0: बापन संग बनाई
1: कौन माई बाप पितर सत पाई
0: करा पे पर बीन
1: वेद के देव कहां को चीन
0: अपने आप आप उतारे
1: सगन अब सगन कहां बिचारे
0: अपन ऊंचे अपने अब नीरा
1: कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: बदम डाय बसमादे
1: नानक अपनी मिल जानो आप
0: अशेद अपेद समाया
1: वहां किसे व्याप्त माया
0: हुआ पे आदेश
1: कौन नहीं प्रवेश
0: एक एक भगवंता
1: कौन चित जागे चिंता
0: अपने आप आप तियारा
1: कौन कथे कौन सुनने आरा
0: नानक
1: आप उसको आपे पहुंचा
0: रजो प्रपंच आकार
1: गन्ना की न विस्तार
0: पौंदे भई कहावत
1: को नर को स्वर्ग शावत
0: माया जंजाले
1: हमें मोह परम पै पार
0: सुकुमान अपमान
1: अनेक प्रकार की व्याख्यान
0: अनखिल आप कर देखे
1: ये सोचे तो नानक एक है
0: भक्त तय आप
1: बसरे पासार संत प्रताप
0: कापे तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: कौदर करे रहा
1: आपे रस भोजन निर्जोग
0: आपन नाई लाग।

0: बोले
1: बोलना कबूल डोला
0: अगर खेले खेला
1: बोलना पाइए गुना मोला
0: जोत मां जागी जोत
1: पार यो सामने उत बोला
0: दाद परम का नाथ
1: नान के में यो विश्वास
0: नाना प्रिखन सब ब्रह्मा
1: संत राम के हृदय सब कर्म
0: नाम दुर्ण सब बचना
1: सर्व व्यापी राग सब रचना
0: जाता तस की रहत
1: साधु जन साधु सब कहते
0: होए तो ही सुख माने
1: कर्म करावन हार रूप जाने
0: अंतर बसे बार यो ही
1: नानक दर्शन देख सब
0: दूर
1: आपे आप भरपूर
0: आप जनाए
1: नाना तेजन आप बुझाए
0: वरतारा
1: सरसारा
0: जा का तना
1: जाने
0: खेल बनाया
1: आज्ञाकारी की माया
0: मदल पतोरा है
1: जो कुछ कहना सो आपे कहे
0: आवे आगे जाए
1: नानक जा पावे ता लय समाए
0: जो ना ही बुरा
1: पूरे कहो कि ने कछ करा
0: भला करतु उदयत नी की
1: आपे जाने अपने जी के
0: तारी सवजाज
1: ओत पोत अपन संग राज
0: जतन कही न जाए
1: दूसर होता सोजी पाए
0: जिया सा परवान
1: गुरु प्रसाद नानक यो जान
0: जो जाने सदा सुख होए
1: आ मिलाए लय प्रभु सोए
0: कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुगज सदै भगवंत
0: अंजने आया
1: जिसको सा सब्जेक्ट कराया
0: हमन का सो आओ
1: जन के संचित आवे नाओ
0: आप
1: मुक्त मुक्त करे संसार
2: ना

आश्रय हो हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलाय तृप्तस है मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिक जीवे त्रिक जी बास जिन हर जन सतगुर संगत पाई।

प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कहो आप हद मोह मचावो हमरे दुष्ट सबै तुम कहो आप हद मोह मचावो सुखी सेवक सिख हमरे दुष्ट सबै तुम कहो आप हद मोह मचावो सुखी बसाए मोर परिवार सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करे सबैरन को आज सिंघले पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरण त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारी तारी है आप हाल द मुझे अबरिया मरण काल का त्रासन भरी है ओ जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुज जो करो रक्षा राख ले हो मह राखण हाड़े साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिव जु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार करता हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैतो जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप समारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को बल मोह मत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्टी ते पुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जबुद कर करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जीते बदन श्रेष्ठ सब तहरा आप अपनी बूझ उचारा

बैठा हो काहू से मठ भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पवो आद जुगाद स्वरूप सजम पहो अवरक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग्रह दौट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब सरणी परे तिनके दुट दुख तुहा मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टाले जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है अच्छा होता ही सब काला दुष्ट रिष्टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुठ छाछ सक न कोई एक बार जंत मैं संभारा काल फास्ते ताहू बारा जिन नर नाम तिहारो कहा दर दुर दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठौर महो सहाई दुष्ट दुख

चलै राख आप मोहे और नंद लय तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहि मैं दास निहारा जान अपना मुझन बाजो आप करो हमरी सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीबन बाजा दास जान करो कृपा करो मोहे हार परा मैं आन दवार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहि मैं किंकर थारा दास जान दंगा तू बारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्यानाओ बहुर करो कबता बेद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र चारो चुक होए कबले सुधारो कबे बाच दोहरा जो निज प्रम सो कह जग माहे जो तही प्रभ को त्याय है अंत सुर को जाहि दोहरा हर हर जन दो एक है बे विचार कछ नाहे जल ते उपज रंग जो जल ही बिकै समाय दोहरा जब आए सो प्रभ को पयो जन्म तरा जग आई अब कथा संक्षेपते सबहु कैत सुनाई काबा च दोहरा ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याए पंथ चलें तब जगत मैं जब तुम करो सहाए दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याए हैं संतो अंत लहंग मुक्त फल पावहंग भगवंत दोहरा कालपुर की देह मऊ कोटक बिशन महेश कोटिंदर ब्रह्मंक ते रावसस करोर जलेसो दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेतै स्वर्ग वासरक बरकरार सगरी पुरी समेत चौ पई जो एह कथा सुनाय अरगावै दुख पाप ते निकट न आवै बिसन भगत की फल होई आद बे अछब सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़बदी प्रथम सुखदावन तय प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लह लो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तारु सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग साध साध जानो नहीं बास बाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसंग।

मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया निज पाओ पया प्रम पगा गुर पूछे मन पति अगा

केते केते रतन समुंद केती अखाणी केती अबाणी केते पात्र रेंदो केती असुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान कण मह ज्ञान प्रचार था नाद विनोद कोड आनंद सर्व कण की बाणी रूप तै घाट घड़िया बहुत अनूप तां कियां गल्लां कथियां न जाहे जी को कह पिछा पछताए इत तै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध आओ इत तै घड़िया सरसदां की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथा जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माहे ताकि रूप न कतने जाहे ना ओह मरण ठागे जाहे जिनका राम सह मन माहे तिथे भगत वसै के लो करह नंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर विखै नद निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जी को कथा तय अंत नंत तिथे लो अलो अकारु जिव जि हुकुम तिवत विकारु वेखै विकसै कर विचारु नानक कथना करड़ा सारु जातु पहारा धीर सुनियार हरण मत वेद थियार भव कला गंतव ताऊ भांडा भव अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सची

है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वर्ण है त्रित के धन है जाके करण है मन माने है जग जाने है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपास है सर्वनाश है करना कर है बेस्वपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करना कर है अजप अजप है थप थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता अमृत है करना कृत है कृता कृत है तरणी त्रित है मतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता मृता मृता अजबा कृता मृता मृता नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नपनायक है सर्वपायक है पगपंजन है अर्गंजन है रिप्तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृता कर्ता कर है हरता हर है परमात्म में सर्वात्म आत्म वासु है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे।

मंत्र नमो ध्यान ध्यानी नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञानी नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रनाथ विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्रूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छांद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख भेख अनाम अकाम गाह नाथ परमाथ अजोनी मोनी न रागे न रंगे न रूपे न देखे अकर्म भरम अगंजे लेखे प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे नकाम बेपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म बेपूते सदा सचदानंद सदन प्रणासी करिमुख निंदा समस्तल निवासी अजायब भूते गजायब गनीमे हरियम करियम करिमल रहमीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भवं शुभं सर्वदा सर्वयुक्ते दोका

बैठा हो कहूँ सिमट भाई शंकर काठा हो सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आद जुगाद स्वरूप सुजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख मारो।

लोक दे रहा। खड़क केत में शरण तिहारी, आप हादल हो बारी, सर्व ठोर मोह सहाय, दोष दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिक सकल देह को हरता, दोष दोखी अनको जय करता। श्री अस्तो जो जापाई दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछित फल पावै सोई, दुख नत सब व्याप्त कोई, अड़ेलो सुना गोंग जो जाहे।

संबत 17 साहस पण जाय अर्ध साहस पुण तीन कह जाय। भाद्रव सुदी अष्टमी रव राम तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया।

न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद समय वो भेद कहे हम एक न जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी करो मैं न कहो सब तो है बखाने हो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहार द्वार बाहें गहें की लाज अस

आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक

ताई है जीवां दे अंदर, चेतन ताई तो भाव जिस सत्ता नाल, बल नाल, जिस कला नाल, ये अकाल पुरख की कला है आत्मा, जीव आत्मा रूह, जिस कला नाल ये शरीर जड़े चलते फिरते ने, किरिया करते हैं, कोई वाहिगुरु का सूक्ष्म रूप आ, ज्योत रूप आ, आत्मा रूप आ, सारे जीवां दे विच एक सार वस रही है, अंदर ते बाहर अखंड ज्योत है, अखंड चेतन है, सच्चे पातशाह आप अविनाशी है, वास्तव विच उही स्वरूप है जो शरीर मिले ने जीवां नूं, ये ते लिमिट विच मुनिया।